0: Hırvan.
1: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज। हफीज होशियारपुरी।

0: दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशे खिदमत है हसरत तुम्हानी की।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: वो आपकी खिदमत में शायर लखनवी की गजल जो फरमाइश के तौर पे दी गई है, जो थके थके से तो हौसले

0: not the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मानर इन द हाउस कम ऑन ऑल द

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे। थैंक यू।
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर। आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर। 13 मेरा कोड है। रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर। थैंक यू।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ठीक है। औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामान्य क्रियाम ये मिला जुला
1: जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के अंदर अपनी अफवाज जो है वो इस बहाने से उतार दी कि भारत ने इसकी अपील की है, जिसका आज तक कोई रिटर्न सबूत सामने नहीं आया। तो ये जंग जो है इसको रोक दिया गया और इसमें ये फैसला किया गया कि जो

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामान्य क्रियाम ये मिला जुला, चलो शाह जी आखिरी फिर मैं करता हूँ दोबारा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है। आज स्पेशल प्रोग्राम में हमारे थिंक टैंक सैयद तौकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, इनसे आज बातचीत करेंगे। हफ्ते में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चूँकि हम लोकल प्रोग्राम कर रहे होते हैं तो लोकल बातें ही हमने करनी होती हैं। तो शाह साहब, आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा कपूर साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिसनर और जितने नाजरीन हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको सबको पता है कि मौसम बाहर जो है वो हमेशा की तरह, कोपेनहेगन में तो इतनी तेज हवाएं नहीं चल रही, लेकिन यूलैंड और फ्यून में दो दिन से बहुत इतनी, आप तूफानी तो नहीं कह सकते, लेकिन तूफान जैसी हवाएं जो है वो चल रही है। और कोपेनहेगन में और वेस्टाइन में मौसम जो है ये बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा है। बादल की टुकड़ियां आ रही हैं आगे पीछे, आंख मझोली हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही, इसलिए मौसम जो है ये काफी खुशगवार है। जी राजा साहब,
1: शाह साहब, मौसम खुशगवार है, तेज़ हवाएं चल रही, आंधियाँ चल रही हैं। तो शाह साहब, कल भी एक आंधी चली, सियासी आंधी चली, आप प्रोग्राम में, मैं भी मौजूद था, आप भी मौजूद थे, तो कुछ बातें हुई जिसमें लोग हमसे भी रابطہ करते हैं, आपसे भी पूछते हैं, जी क्या हुआ शाह साहब? तो शाह साहब, कल क्या वाकया हुआ?
2: देखिए जी, कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कल तरीके कश्मीर ने एक काफी बड़ी मीटिंग कॉल की हुई थी, जहां पेचीदा पेचीदा जो मुख्तलिफ पार्टियों के और मुख्तलिफ ओहदों पे बैठे हुए लोग जो थे वहां पे मदो किए गए थे, जिनमें जर्नलिस्ट लोग भी शामिल थे। जहां आप खुद एज ए कम्युनिटी चेयरमैन, एज ए जर्नलिस्ट, आप वहां पे खुद तशरीफ रख रहे थे, अम्बेसडर साहब थे वहां पे, पाकिस्तानी हमारे अम्बेसडर साहब, और इसके साथ उनके लाइफ जो है वो पेचीदा पेचीदा लोग थे। तो कश्मीर के ऊपर जो है वो बात हुई है, और कश्मीर के ऊपर किस तरह की बात हुई है, जैसे कि हर साल हर सीजन में 5 अगस्त आता है या कोई ऐसा दिन आता है, तो कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आती कि इसका लाहमा क्या है, इसका अगला आने वाला मुस्तकबिल क्या है। तो मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगा कि लोगों को इल्म हो, लेकिन मैंने आज खुद एक यहाँ वॉइस ऑफ कश्मीर के नाम पर voiceofkashmir.dk के नाम पे एक तहरीक इब्तदा की है, जिसमें हम उर्दू, इंग्लिश और डेनिश जबान के अंदर, क्योंकि इस वक्त डेनमार्क जो है 1 अगस्त से ये प्रेसिडेंट बना है, फॉरमैन बना है, हमारी जबान में फॉरमैन डेनमार्क में कहते हैं, और इंग्लिश में और पाकिस्तानी जबान में प्रेसिडेंट और सदर कहा जाता है। ये यूनाइटेड नेशन की जो असेंबली है उसके ये सदर बना है। तो हम यहाँ पे इस मुहिम में मजलूम कश्मीरियों की आवाज बनेंगे, हम उनको लिखेंगे, क्योंकि हमारा दहशत गर्दी से कोई तलक नहीं और ना हमारी जमात इस तरह की कोई आवाज उठाएगी, लेकिन हम रूल्स एंड रेगुलेशंस, दुनिया भर के रूल्स एंड रेगुलेशन का एहतराम करते हुए हम भारत के खिलाफ एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया हमने कि हम इसके ऊपर लिखते रहेंगे और इस आवाज को बढ़ाते रहेंगे,
1: कानून कायदे का एहतराम करते हुए। जी शाह जी,
2: जी बिल्कुल बिल्कुल जी, हमने कहा जी कि हर मुल्क का, इवन डेनमार्क का, और यहाँ के रहते हुए हम लोगों को, अपने लोगों को नहीं बल्कि हम डेनिश लोगों को ये इंफॉर्मेशन उनकी जबान में मुहैया करेंगे,
1: अवेयरनेस
2: भाई
1: देंगे,
2: अवेयरनेस देंगे कि कश्मीरियों को के साथ क्या हो रहा है, और उनकी बकायदा पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करेंगे, और हम एक पुरअमन, जो हमारे दीन का सबसे बड़ा हिस्सा है अमन इस्लाम पहला ही अमन से था और मोहब्बत से, तो हम अमन की आवाज देंगे। और इसके साथ हम अपनी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये बार बार रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप को जो है मुअत्तल कर दें, वहां से जान छुड़ाएं, क्योंकि जब तक हम कॉमनवेल्थ के सिटीजन हैं तो हम एक कलोनी की हैसियत रखते हैं और हम कश्मीर की तरफ कभी नहीं जा सकेंगे। लोगों को ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब गिलगित बलिस्तान और ये दूसरा आजाद कश्मीर का हिस्सा जो है, ये मुजाहिदीन पाकिस्तान और पाकिस्तान के वो चंद फौजी ऑफिसर जिसमें मेरे वालिद साहब उस वक्त फुल लेफ्टिनेंट थे, तो ये इन्होंने जो कब्जे किए, तो उसके बाद अंग्रेजों ने, क्योंकि हमारा जो आर्मी चीफ था वो भी जनरल अंग्रेज था, और इसलिए उसने कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह रहमतुल्लाह अलैह की बात मानने से इनकार कर दिया और अंग्रेजों ने जम्मू और कश्मीर श्रीनगर के अंदर अपनी अफवाज जो है वो इस बहाने से उतार दी कि हम भारत ने इसकी अपील की है, जिसका आज तक कोई रिटर्न सबूत सामने नहीं आया। तो ये जंग जो है इसको रोक दिया गया और इसमें ये फैसला किया गया कि जो कश्मीरियों का फैसला होगा कि वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, क्योंकि ये फैसला हुआ था आजादी के वक्त कायद आजम मोहम्मद अली जिनाह ने ये बकायदा अंग्रेजों के साथ ये मुआहदा किया था कि कश्मीर जो है वो शाहराग है और शाहराग के बगैर पाकिस्तान जिंदा नहीं रह सकता, ये पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। लेकिन भारत ने अंग्रेजों की शह पे इस पे भी कब्जा कर लिया और आज तक इसको जो है वो इसकी वायलेशन हो रही है और इसके ऊपर कब्जा उन्होंने बरकरार रखा है। तो इसके ऊपर हम काफी जो है वो लिखना शुरू भी
1: बात आप करना चाहते थे, ये आप इंफॉर्मेशन देना चाहते थे अपने लोगों को।
2: जी बिल्कुल, इसलिए कि जिन लोगों में
1: दिया जा रहा था,
2: देखे मौका, हाँ आपने ये बात की, मेरे अपने मौके की बात का मुझे कोई ना दुख है ना गम है। मेरा ये जो मैंने प्रोटेस्ट किया था वो ये था कि जब आप लोगों को बुलाते हैं और लोगों के आप लीडरशिप को देखें कि वो उन्हीं लोगों की वजह से हमारे हम सब लोग लीडर बनते हैं, और अगर उनमें बेइंसाफी की जाए तो उसके ऊपर इंसाफ की आवाज उठनी चाहिए। और तरीके कश्मीर हमेशा का जो फार्मूला लेके आ रही थी उस चंद बंदों ने, मैं इसका इल्जाम ना मियां मनीर पर लगाऊंगा और ना उनके सदर पर लगाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो उनका स्टेट सेक्रेटरी था उसने हस्ब आदत, वो किसी भी नून लीग की हो तंजीम किसी का भी हो, तो वो हमेशा इसी तरह करता है। तो इसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट है वो मैंने किया कि आम आवाम को आम कॉकरेज की तरह नहीं सोचना देखना चाहिए, बल्कि जो जो हमारे साथी थे वो हमसे बड़े लीडर थे और उन्हीं की वजह से हम आज आपको लीडरान समझते हैं।
1: तो जब तक कह सकते हैं कि आपको यही वॉइस ऑफ कश्मीर बनाने की वजह बनी।
2: जी बिल्कुल, मेरी ये तमन्ना थी कि हम लोग बजाय डेमोंस्ट्रेशन करने के, बजाय हम बातें करने के, हम लोगों को इस चीज पे राजी करें कि वो मजलूम कश्मीरियों के साथ दीनी तौर पे अपना इत्तेहाद करें और उनकी आवाज बने। यहाँ पे बच्चे बड़े बूढ़े जो भी है इस प्लेटफॉर्म पे हफ्ते में कम से कम 4-5 दफा इसके ऊपर आर्टिकल्स लिखे, हम एक्स पे जाएंगे, हम पूरे सोशल मीडिया पे जाएंगे, हम वहां पे आवाज इतनी जबरदस्त और इतने पूरे शोहदा के साथ हम ये बात करेंगे कि हमारे जो बच्ची है, जो हमारे बच्चियों बहनों के साथ वहां रेप हुए हैं, जो ज्यादती है वहां पे भारतीय फौज कर रही है, और जिस तरीके से इस जुल्म के अंदर पूरा यूरोप पूरी इंसानियत खामोश बैठी है, हम उसके पर आवाज करेंगे और इस ताकत को हम सामने लेके आएंगे। और फिर हम हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ हो या पाकिस्तान का सोसाइटी हो या आपके एज ए कम्युनिटी चेयरमैन की हैसियत से कोई भी तंजीम हमें बुलाएगी तो हमारे जो वर्कर्स हैं या हमारे जो बंदे जो इस तंजीम में शामिल हो रहे हैं वो सबके साथ आपके साथ होंगे
1: शाह साहब,
2: और
1: आप
2: इंशाल्लाह
1: माशाल्लाह
2: ताला।
1: बड़े एक्टिव हैं, बड़ा एक्टिव रोल अदा करते हैं, मीडिया पर आप नज़र रखते हैं और लोगों को अपनी राय भी देते रहते हैं, हर हफ्ते में 2-3 बार लेटेस्ट चीज़ें भी बताते रहते हैं। शाह साहब आपसे सवाल है, आपसे बड़ा ज़िंदगी का आपके पास तजुर्बा है। शाह साहब, जब भी मजलूमों की बात की जाती है तो हमारा जो इख्तिताम होता है वो खाने पीने पर होता है।
2: जी ये बिल्कुल गलत चीज है। खाना पीना हमें नहीं करना चाहिए बल्कि वही जो पैसे हैं वही जो मजलूम लोगों की आवाज है
1: बिल्कुल
2: उनके उनके जो मीडिया पे हम खर्च कर सकते हैं, उनको उनके इश्तेहार बनवा सकते हैं, हम ऐसे मीडिया हाउसेस को
1: डोनेट
2: लिख
1: कर
2: सकते
1: सकते
2: हैं
1: हैं।
2: जो डोनेट कर सकते हैं उन लोगों को।
1: ठीक है,
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ठीक है, माजद ख्वाह हैं कि हमारा आउज़
2: सिस्टम
1: बिल्लाह मिन
2: थोड़ा सा
1: शैतान
2: डिस्टर्ब हो गया,
1: रजीम,
2: जिसके लिए माजरा।
1: बिस्मिल्लाह
2: जल्दी आप
1: रहमान
2: खिदमत में
1: सामान
2: हाजिर होंगे।
1: त्रियम ये मिला जुला। चलो शाह जी, आखिरी फिर मैं करता हूँ दोबारा। आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम,
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: मोहतरम सामाइन, मेरी आज की गुफ्तगू का मौजू है मुनाफिकीन। कुरान हकीम के शुरू में अल्लाह ताला ने इंसानों को तीन ग्रोहों में तकसीम फरमाया है, नंबर एक मोमन, नंबर दो काफिर और नंबर तीन मुनाफिक। सबसे पहले अल्लाह ताला ने मोमिनीन का मुख्तसर जिक्र फरमाया है, फिर कुफार का जिक्र सिर्फ एक ही आयत करीमा में किया है और आखिर में मुनाफिकीन के बारे में इंतहाई तफसील से जिक्र फरमाया है। इन मुनाफिकीन का जिक्र कुरान मजीद में इतनी तफसील से इसलिए है कि ये माशरे के बदतरीन अफराद हैं। कुफार से कहीं ज़्यादा नुकसान इस्लाम को इन मुनाफिकों की वजह से पहुँचा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक ताला ने कुरान हकीम में इन मुनाफिकों के किरदार को पूरी तफसील से बेनकाब किया है। यही नहीं बल्कि इनके दर्दनाक अंजाम की भी मुफस्सल खबर दी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इन मुनाफिकीन के बारे में क्या फरमाता है। सूरतुल बकर की आयत नंबर 8 और 9 का तर्जमा है कि और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम खुदा पर और रोज़े आखरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते। ये खुदा को और मोमिनों को चकमा देते हैं मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को चकमा नहीं देते और इससे बाखबर हैं। मोहतरम सामईन, ज़रा गौर फरमाइए, हालांकि ये मुनाफिकीन अल्लाह की वहदानियत का ऐलान कर रहे हैं और रोज़े क़यामत पर यकीन का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार नहीं कर रहे। ये उस दौर के यहूदियों का रवैया था। और ये कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार ना किया जाए किसी भी बात का यकीन कोई मानी नहीं रखता। सूरतुल बकर की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, खुदा ने इनका मर्ज और ज़्यादा कर दिया और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सामईन मोहतरम, इस आयत से ज़ाहिर होता है कि झूठ बोलना कोई छोटा मोटा मामूली गुनाह नहीं है बल्कि झूठ वो गुनाह अजीम है जो एक मोमन को मुनाफिक बना देता है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह हज की आयत नंबर 30 में झूठ का बुतपरस्ती के साथ जिक्र फरमाते हैं। इरशाद होता है कि अपने आप को बुतपरस्ती और झूठ बोलने से बचाओ। मुनाफिकों के बारे में अल्लाह ताला कुरान करीम में मजीद फरमाता है, सूरतुल बकर की आयत नंबर 11 और 12 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना डालो तो कहते हैं हम तो इसलाह करने वाले हैं। देखो ये बिलाशुबा मुफसद हैं लेकिन खबर नहीं रखते। आगे चलकर अल्लाह ताला फरमाता है सूरतुल बकर की आयत नंबर 13 का तर्जमा, और जब इनसे कहा जाता है कि जिस तरह और लोग ईमान ले आए हैं तुम भी ईमान ले आओ तो कहते हैं भला जिस तरह बेवकूफ़ ईमान ले आए हैं इसी तरह हम भी ईमान ले आएँ। सुन लो कि यही बेवकूफ़ हैं लेकिन ये नहीं जानते। मोहतरम सामईन, ईमान की कसौटी ये है और काबिल कबूल ईमान सिर्फ वो है जो कि सहाबा कराम की तरह का हो। गौर फरमाइए कि सहाबा कराम की कितनी इज़्ज़त अफजाई है। अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म इस तरह बयान फरमाई, सूरतुल बकर की आयत नंबर 14, 15 और 16 का तर्जमा, और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं हम ईमान ले आए हैं और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो इनसे कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं और हम तो उनसे हंसी किया करते हैं। ये मुनाफिकों से खुदा हंसी करता है और इन्हें मोहलत दिया जाता है कि शरारत और सरकशी में पड़े बहक रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हदायत छोड़कर गुमराही खरीदी तो ना तो इनकी तजारत ही ने कुछ नफ़ा दिया और ना ही वो हिदायत याब हुए। बस अल्लाह ताला मुनाफिकीन को मोहलत दे रहा है कि वो मुनाफ़िकत से बाज आ जाएं और इसने इन्हें मोमिनीन की दुश्मनी के अंधेरे में भटकता हुआ छोड़ दिया है। ये लोग वो हैं जो हदायत के बदले गुमराही खरीद रहे हैं और ये सिर्फ नुकसान का सौदा है। इसके बरक्स आइए देखिए कि अल्लाह ताला मोमन मर्दों और मोमन औरतों के बारे में कुरान मजीद में क्या इरशाद फरमाता है। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 12 का तर्जमा है कि जिस दिन तुम मोमन मर्दों और मोमन औरतों को देखोगे कि इनके ईमान का नूर इनके आगे आगे और दाहिनी तरफ चल रहा है तो इनसे कहा जाएगा कि तुमको बशारत हो कि तुम्हारे लिए आज बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और इनमें हमेशा रहोगे और यही बड़ी कामयाबी है। मोहतरम सामईन, यहाँ कई बातों की वजाहत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि मोमन मर्दों और मोमन औरतों के अजर यकसा हैं। रोशनी उनके दाहिनी तरफ होगी यानी इनका आमाल नामा इनके सीधे हाथ में दिया जाएगा और रोशनी یا نور کا سامنے ہونا تو یوں بھی صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم تاریکی میں راستہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو نور یا روشنی عموماً ہمارے سامنے ہوتی ہے تاکہ ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ نور یا روشنی کا مومن مردوں اور مومن عورتوں کے آگے یا سامنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ان کے اچھے کاموں یعنی دنیا میں نیکیوں اور تقوی اختیار کرنے کا انعام دیا جا رہا ہے۔ اس ایک نقطہ کی وضاحت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث کا حوالہ دیا جا سکتا ہے۔ مثلاً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو رات کی تاریکی میں مسجدوں میں عبادت کے لیے جاتے ہیں، قیامت میں ان کے لیے ایک خاص قسم کا نور ہوگا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ جو لوگ پانچ وقت نماز با جماعت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کو قیامت کے دن ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جو لوگ نماز کے سلسلہ میں اس کے برعکس ہوں گے ان کا حشر قارون، حامان اور فرعون کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی جمعہ کے روز باقاعدگی سے سورۃ کہف کی تلاوت کرے گا قیامت کے دن اس کو ایک نور عطا کیا جائے گا جو اس کے قدموں سے شروع ہو کر آسمان کی بلندیوں تک جائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن حکیم کی ایک آیت ہی تلاوت کی اس کو قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ فرمایا اللہ کے رسول نے کہ جس مسلمان نے مجھ پر درود و سلام بھیجا اسے ایک نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں اسے پل صراط کا راستہ طے کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس طرح ہر نیک، متقی اور پرہیزگار مسلمان کو برود قیامت ایک خاص نور عطا کیا جائے گا، جبکہ کفار و منافقین کے لیے معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ منافقین اور کفار کے لیے فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 کا ترجمہ، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف نظر کیجئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور وہاں نور تلاش کرو، پھر ان کے بیچ ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک ایسا دروازہ ہوگا جس کی اندرونی جانب تو رحمت ہوگی اور بیرونی جانب عذاب اور اذیت ہوگی۔ تو اس وقت منافق لوگ مومنوں سے کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں تھے، تم تھے تو ضرور لیکن تم نے خود اپنے تئیں بلا میں ڈالا اور ہمارے حق میں حوادث کے منتظر رہے، اسلام میں شک کیا اور تمہاری آرزوؤں نے تم کو دھوکہ دیا، یہاں تک کہ خدا کا حکم آ پہنچا اور خدا کے بارے میں تم کو شیطان دغا باز دغا دیتا رہا، تو آج نہ تو تم سے فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی کافروں سے فدیہ قبول کیا جائے گا، تم سب کا ٹھکانہ

0: बिल्कुल बरअक्स होगा। इसी सिलसिला में इब्ने कसीर ने एक बहुत तवील हदीस नकल फरमाई है जिसमें कहा गया है कि हर मोमन को इसकी नेकियों के इवज़ एक नूर अता किया जाएगा। किसी को पहाड़ के बराबर नूर अता होगा, किसी को खजूर के दरख्त के बराबर, तो किसी को इसके अपने कद के बराबर नूर अता होगा। सूरतुल हदीद की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जान रखो कि खुदा ही ज़मीन को इसके मरने के बाद ज़िंदा करता है। हमने अपनी निशानियाँ तुमसे खोल खोल कर बयान कर दी हैं ताकि तुम समझ सको। मोहतरम सामईन, यहाँ अल्लाह ताला हमें याद दहानी करा रहा है कि जिस तरह वो मुर्दा ज़मीन को दोबारा ज़िंदा कर सकता है, इसी तरह वो मुनाफिकीन के मुर्दा दिलों को भी ज़िंदा कर सकता है अगर वो सच्चे दिल से अपने गुनाहों से तौबा करके राह रास्त पर आ जाएं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आप सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए और हमें नफाक से बचाए, हमें सही मानों में सच्चा और पक्का मुसलमान बनाए, ताकि हम सबको भी बरोदे कयामत अल्लाह ताला वो नूर अता फरमाए जिसकी रोशनी में हम सब जन्नतुल फिरदौस में दाखिल हो सकें। आमीन।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: Vi skulle på tur til Münzklint. Det tog os 2 timer og 30 minutter at køre derhen. Da vi kom frem, kunne vi med det samme se den flotte natur. For at komme ned til stranden, skulle vi gå ned af over 600 trapper. Det var en lang tur ned, men udsigten var virkelig flot. Nede på stranden så vi de store hvide klinter og det klare vand. Vi gik langs stranden, fandt flotte sten og muslingeskaller og nød den smukke natur.
3: Vores tur til Münzklint del 2. Da vi skulle tilbage, ventede over 600 trapper op igen. Det var hårdt, og vi blev trætte, men vi holdt små pauser undervejs. Da vi kom op, var vi stolte over, at vi havde klaret det. Bagefter spiste vi vores mad og nød den flotte udsigt. Til sidst kørte vi hjem igen. Turen hjem var hyggelig, og vi snakkede om alt det, vi havde oplevet. Det var en spændende dag, som vi sent ville glemme. Tusind tak for at lytte med.
1: FM 92.9 og Kabelnet 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: एफ एम 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिरादरान इस्लाम, दुरूसे साबका में सीरते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाब में हमने कुछ बातें अर्ज की। कुछ जिक्र तो था जजीरा अरब के बारे में कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस जजीरा अरब का क्या हाल था, क्योंकि अल्लाह ने हुजूर की बेसत के साथ इसका कुरान में भी खास तौर पे जिक्र किया है कि वइन कानू मिन कब्ल लफी दलाल मुबीन, कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ये लोग खुली गुमराही में पड़े। उसके बारे में हमने कुछ बातें अर्ज की और फिर उसके बाद वो मुबशरात और वो मुअश्शरात, मुअश्शरात का माना यानी वो इशारात, मुबशरात का माना होता है किसी चीज के बारे में खुशखबरियां। तो ये मैंने सीरत के पहलू से पहले अर्ज किया था कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं है कि खुद ब खुद एक इत्तेफाक है, बल्कि ये बिल्कुल अगर आदमी बड़े तअम्मुल से, गौर से, फिक्र से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा के हर पहलू पे नजर डाले तो समझ आता है कि खालिक कायनात ने ये सारा इंतजाम, ये सारी बिसात जो है ये इसीलिए बिछाई गई। ये ऐसा नहीं कि इत्तेफाक ऐसा हो जाए, यानी आप किसी भी पहलू पे नजर डालें। यही मैंने अर्ज किया था कि उस वक्त दुनिया में दो सुपर पावर्स थी, एक रूम और एक फारस, लेकिन ये सरजमीन हिजाज एक जमीन थी जिस पे दोनों सुपर पावर का कंट्रोल नहीं था। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस खित्ते को मंतखब करना हुजूर की विलादत के लिए, तो इसमें आखिर कोई बात तो ऐसी थी कि दो ताकतें एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, एक मावरा नहर तुर्कमेनिस्तान की तरफ और एक अल्बानिया से लेकर हबशा से लेकर यहां तक, ये दोनों ताकतें बाहर से घिरे हुए हैं, लेकिन ये दरमियानी टुकड़ा किसी के तसल्लत पे नहीं। और अल्लाह पाक ने इसी जगह अपने उस आखिरी नबी खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, क्योंकि ये तो फिर आपके अपने तदब्बुर पे होता है। अब देखे ना जी, जैसे आजकल सुना आपने और पढ़ा आपने अखबारों में भी, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का एटमी धमाके करना, ये करना, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। तो इस पर एक जो साइंसदान है वो अपनी नजर डालेगा, जो सियासी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे, जो इक्तसादी लोग हैं वो अपनी नजर से सोचेंगे कि इसमें कितना फायदा कितना नुकसान, वो जरब तकसीम लगाएंगे, और आमत उन्नास जो हैं वो अपने फिक्र से सोचेंगे, और एक कुरान और सुन्नत का तालिबुल इल्म जो है उसे अपने फिक्र और नजर की रोशनी में सोचना पड़ता है कि ये भी कोई ऐसी चीज तो जरूर है कि जिस साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल है उसी साल में हाथियों के बादशाह ने हमला किया जो आप पढ़ चुके, और हाथियों के हमले को खत्म करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने परिंदों को भेजा, बाबील को, बड़ा मारूफ किस्सा है, और तीन पत्थर लेके आए और गिराए गए और वो खत्म कर दिए गए हाथी। तो ये वो तीन पत्थर क्या थे जिनको अल्लाह ने खसूसी तौर पे कुरान में जिक्र किया, वरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारत मिन सिज्जीदिन, कि हमने वो तीन परंदे भेजे कि अबाबील और ताकि वो उनपे पत्थर जो सिज्जील एक खास जहन्नम की आग में पकाए गए, आम पत्थर नहीं थे कि पहाड़ के उठा लो। तो इसी से वो आइटम के जर्रे पे आप गौर करें कि दुनिया उस जर्रे पे पहुंची कि एक जर्रे से भी इतनी बड़ी चीजें जो है वो तिबा की जा सकती है। तो असल चीज तो ये इस्लाम ने पेश की थी, कुरान ने पेश की थी, फिर अपनी अपनी सोच से लोग वहां पहुंचे कि ये एटम का जर्रा क्या है। अच्छा, इस एटम के जर्रे का उस साल पैदा होना जिस साल नबी पैदा हुआ हो क्या वजह है आखिर, इस पे आप गौर करें। अल्लाह ने आप इल्म दिया है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आखिर उसी साल ये अल्लाह बाग ने क्यों एटम का जर्रा पैदा किया। उससे पहले मुख्तलिफ कौमों पे अदाब आ चुके हैं, किसी को सयाह से मारा गया, किसी को बिजली की कड़क से मारा गया, किसी को पानी में डबोया गया, किसी की बस्तियों को उलट के फेंक दिया गया, कहीं हवा भेजी गई, लेकिन ये तक अजाब किसी पे नहीं भेजा गया कि ऊपर से एक छोटा सा परिंदा उड़ता हुआ आए और एक छोटी सी कंकर डाल दे, और वो अगर ऐसे आगे हालत ऐसी पैदा कर दे कि फजालहुम का असफिम अकूल, ऐसे कि जैसे कोई घास खा खा के चबा चबा के जानवर फेंक देता है ना, इतनी बड़ी चीजें उस तरह हो जाएं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: अब आप इस मुबारक सिलसिले का तीसरा हलका समाअत फरमाएं।
2: फौरन, क्योंकि हजूर ने आके कहना था ला किसरा वला कैसरा बादहू, तो ये सारे इंतजाम जो किए जा रहे हैं कि कहीं किंगरे गिर रहे हैं और रोशनी आती है तो रोशनी से सीधा सूर्य शाम के महल दिखाए जाते हैं, क्योंकि मेरे मदनी की इब्तदा मक्का से थी, महजर मदीना था और इंतहा शाम थी। क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कहां से हुआ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा कहां से हुआ, मक्का से शाम बैतुल मक़दस, और यौम महशर कहां कायम होगा, शाम बैतुल मक़दस। तो लिहाजा इब्तदा थी और यहां से नूर के साथ आपका इंतहा भी दिखा दी गई कि मदनी का मौलद मक्का होगा और महजर जो है वो तैबा होगा और मुंतहा जो है वो शाम होगा, बैतुल मक़दस होगा। अच्छा, और खुदा की शान देखें, ईसा इब्ने मरियम भी तस्दीक के लिए कहां उतरेंगे, वही शाम। तो अब जनाब बीबी आमिना फरमाती हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमत दो जहां, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो फरमाती हैं ये तमाम दुनिया के बच्चों से एक अलहदी वजह पे पैदा हुए कि बाकायदा मुअर्रखीन ने लिखा है कि आप जब पैदा हुए तो आपके दोनों हाथ जमीन पे थे और ऐसे महसूस होता था कि सजदा कर रहे हैं अपने अल्लाह को, और उसके बाद ऐसे उंगली उठाई और आसमानों की तरफ देखा। ये कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक पैदा होने वाला बच्चा यूं करे। बाज़ उलमा ने तो हजूर का कलाम भी नकल किया है कि जैसे महद में ईसा अलैहिस्सलाम ने कलाम किया, इसी तरीके से यानी गोद में उस माश्ता के बेटे ने कलाम किया, असाब उहदूद के वाक़े में बाकायदा एक बच्चे ने कलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब तोहमत लगी तो बच्चे ने कलाम किया। तो बाज़ उलमा ने नकल किया है कि हजूर ने भी कलाम किया, और बाज़ इतना लिखा है कि पहला कलाम ही ये था अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतन व असी। और सीरत पाक के इस पहलू पे देखेंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाती हैं कि वुलिदा मख्तूनन व मसरूरा, कि हजूर जब पैदा हुए तो खतना हो चुका था और हुजूर जब पैदा हुए तो चेहरे पे मुस्कुराहट है, मसरूर है, खुशी है। अब्दुल मुत्तलिब को खबर दी गई, क्योंकि हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले ही आपके वालिद अब्दुल्ला तो फौत हो गए। आप खुदा की शान देखें कि वालिद यूं फौत हो गए, फिर बाद में वालदा फौत हो गई, दादा फौत हो गए, चाचा फौत हो गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान यतीमी जिसको कुरान ने खुद जिक्र किया कि अलम यजिद का यतीमन, लेकिन आगे भी कह दिया फा आवा, कि मेरा मदनी आपको हमने यतीम नहीं पाया, फिर हमने आपको खुद तरबियत दी, खुद हिफाजत की। क्योंकि कोई ये तसव्वुर न करे कि यतीम बच्चे तो आमतौर पर भटक जाते हैं, उनको तो कोई संभालने वाला नहीं होता, ना बाप ना माँ। जिनके माँ बाप हैं वो तो कंट्रोल करते हैं ना बच्चे को, क्या पढ़ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, कौन दोस्त है, लेकिन जो यतीम है उसका कौन फिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया ना ना मेरे मदनी को ऐसा यतीम ना समझना, उसका तो मैं खुद इंतजाम करने वाला हूँ और मैं वालिदैन को भी उठा रहा हूँ ताकि अगर कल को कोई बच्चा काबिल हो। तो लोग कहते हैं ना जी अजी ऐसे बहरहाल क्यों ऐसे काबिल ना होता, देखो किस बाप का बेटा है, तो लोग उसकी काबिलियत को बाप की तरफ निस्बत करते हैं, शागिर्द की लियाकत को कहते हैं जी ठीक है माशाल्लाह ये डॉक्टर साहब बड़े लायक है, लेकिन इन्हें किस उस्ताद से पढ़ा है, उस्ताद भी तो देखो ना। अल्लाह ने फरमाया मेरा मदनी न मैं आपका बाप रखूंगा न दादा न उस्ताद न मदरसा, ताकि तेरे कमालात की निस्बत सिर्फ तेरे रब के साथ हो और किसी के साथ, और किसी से निस्बत की ही ना जा सके। कोई ये ना कहे कि जी बाप की तरबियत ने इनको बना दिया। इसलिए हुजूर फरमाते थे कि अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, कि मुझे अदब जो सिखाया मेरे रब ने सिखाया, मेरी तरबियत मेरे रब ने की है। तो वो कैसा अदब था कि आप हैरान होंगे कि पैदा होने के बाद भी जिन्होंने बाएं पिस्तान से कभी दूध पीना गवारा नहीं किया कि मैं नबी हूं, मेरा काम दाएं से पीना है, दाएं हाथ से पीना है, दाएं चीज को पसंद करना है, मैं इसार को क्यों पसंद करूं। اندازہ کریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا. اچھا عبد المطلب کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں بیٹا ہوا. عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے. جب ان کو اطلاع ملی کہ آپ کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے اور ولد مقتونا و مسرورا, اور یہ پہلا خوش نصیب بیٹا ہے کہ جو مقتون ہے ختنہ بھی ہو چکا ہے اور جو سرہ ہے وہ بھی خود بخود کٹی ہوئی ہے, اس کو بھی کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. حیران ہو کہ ان کا اچھا, تو جلدی جلدی دوڑے آئے اور اپنے بٹے کو اٹھایا. اور پتا ہے اور بی بی بھی کہتی ہے اللہ اکبر. اب حالانکہ دیکھیں کہ اس وقت نہ توحید ہے نہ دین ہے, لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے کہ حضور کے پیدا ہونے کے بعد جو پہلا لفظ میں نے کہا نا حضور کے لیے, جو پہلا پہلا کلمہ میرے منہ سے نکلا, اور وہ کیوں نکلا, وہ فرماتی ہے کہ میں ابھی حضور میرے پیٹ مبارک میں تھے کہ میں یہ سن چکی تھی آواز کہ جب بچہ پیدا ہو یوں کہنا ہے اعیذک باللہ الواحد من کل حاسد, کہ میں تمہیں اس اللہ واحد کی پناہ میں دیتی ہوں ہر حسد کرنے والے سے. یعنی پہلا پہلا کلمہ جو ہے وہ بھی اللہ سے پناہ پکڑے.